0: ये हिसाब से सब लोग कैसे जीवित थे वो विराट की तरह ये कोई यहाँ ऐसा था कि जम रास्ता यहाँ सिटी तो मैं रास्ता नहीं हो बढ़िया फिर हो बहुत बढ़िया चीज हो तो फिर बहुत प्रकार की हो
1: रेडियो को हमें फिर पुराना के दस मतलब साथ में कहा हमारे स्टूडियो खरीम बिहार में छापा जाता है आप सुनिए।

0: रक्षा करने की सामुदायिक रेडियो प्रसारक समय पाल कर दी
1: भारतीय आशाको थेरापी आशाको सर्वे

भर्तियां संभावना दी उन्हें जानकारी दी है। कृषि सरकार को प्राथमिक और सैन्य मानसिक स्वास्थ्य मंत्री शिक्षा मंत्रालय प्रार्थना कर लेकिन वहां को जरूरी बागमती को स्थायी प्रशासनिक केन्द्र बनाने रूप अध्ययन प्रत्युत्तर शैली अधिकार निश्चित पुरस्कार अधिकारी हेटाबाट लेख्नु भएको छ। संकट संग तीव्र परिवर्तन होते जनवानुमति शीर्षकमा यो पनि लेख्नु छ। सरकारले 7 वर्ष अघि ल्याएको राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति परिवर्तन गर्दै जलवायु संकट संग

सम्पर्क अपनाउने रेडियो पूर्वाधार एफएम द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।

0: संपत्ति के लिए मैं बहुत दिन हो रही है। अब वो कचरा था कि मैं दस दिन में जाऊँ, नहीं तो कहा पहले तो बहुत कम गाँव गए। अब तो जहाँ देखो चले जाऊँ तो जहाँ से फूट दे हुआ जहाँ से बचा दे हुआ मुझे बस
1: अमीर
0: के बचाव के बस उन्होंने जैसे नेपाल का अमीर के हमें देश में पाल कर कोई समाज में है तो छोटा डॉक्टर डॉक्टर मैं हम ध्यान जाए के संसद आए जी मेरे नियम के मैं तो बस भटक बनाए मेरे हम डॉक्टर बस सोचते चुनाव के दिन में नहीं करेंगे तब भी जल्दी खत्म लेते पूरा दिन में खजरे जंगले जंगले है भारत कभी कभी तो खजरे पुराने खजरा हम जो है तो उन्हें खाते बस हम बस फिर खाते वो कुछ सुना खाए तो उन्हें तो होता है अपने देश में खा रहे हैं तो मैं पा कर खाए तो खा खो तो मैंने मेरा मेरा गुजर गुजर करा कई के मैंने तीन बजे तीन में बस चल गए तो आए चाहे चाहे चाहे तब हमने दिन दिन दूर जाए तब दिन दूर जाए तब पहुंचे खाए अरे तुम क्या तुम क्या तुम मिले नहीं मिले रुपये मिले बस नहीं रुपये तो नहीं खिंचाई मैंने दस बीस सौ पचास रुपया तो नहीं खिंचाई सौ रुपये सामान लेंगे तो टोटल हम भी दस सामान हाँ तो ये नेपाल से जाए होता जहाँ मेरा मेरे दशा है तो जब वहां से लौटे तो मैंने बच्चे के लिए दुनिया से ठीक करे थे बच्चे में हम तो पहले तो हम दशा कर गए तो हमारे के पहले में हुआ चार हजार रुपये सके तो कभी चार हजार बताए क्यों हमें किसी भी मन खोजे चार हजार भूजे लेने के बाद नहीं मिले हमने चार हजार पचास रहते होंगे
2: Thank you.

0: डॉक्टर को सकते हैं, उस नाक के नाक को हमको तब बदलती बदलती तो हमें बदलती तो हम जगह से छुटने लगे तो हमको कहना हो हमें जो देखें तो कथा सिखाते हो आप हमें तो जीतने की जानना थी तो हम उसके तो सब लगे
1: समस्या प्राकृतिक संख्या 2 दिशा का खाद्य देते हैं।

0: अवस्था में निकालने को जो उद्देश्य के लिए आने
1: तो कल्पना झुकिए पर भी गर्म होते हैं और जब अवस्था में निकाली तब लाने को लेको जोखिम बढ़ने को सामान को लोग कर रहे और लोग कर खाने वाले नहीं पुरी लोग का कारण जैन से नहीं जाने सकता
0: वो माले पर एक पुरे सही हो जैन मार्चिंग को धन जैन नवाई कि हम कि
2: एफएम द्वारा जनहित प्रचारी संदेश

0: जीवन सकिन्छ।
1: 40 वर्ष कटेपछि नियमित स्वास्थ्य जाँच गरौँ।
0: चिलो पदार्थ, माछा मासु कम खाऊ। खानामा सागपात र फल फुल खाऊ।
1: मद्यपान र धुम्रपान सेवन नगरौँ।
0: स्वस्थ रह, सुखमय जीवन बिताउँ।
2: रेडियो प्रभाव एफएमद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।

स्वास्थ्य पत्राचार संख्या मंत्रालय इसी के अनुरोधी तथा गृह नियंत्रण महाशाखा राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केंद्र विश्व स्वास्थ्य संगठन विभाग

स्वास्थ्य संस्था में बेडमेंट का संख्या बढ़ा। घासोली नगर पालिका का स्वास्थ्य चौकी नगर अस्पताल में दैनिक 70 से 80 का संख्या में सर्दी खोखी और चोरी तोड़ना आएगा था। मौसम परिवर्तन संग चोरी लेना सर्दी खोखी और नाक टाइफाइड फैलना पर चिन्ह प्रसिद्ध धारण कैसे जाएगा। घासोली नगर अस्पताल का जन स्वास्थ्य निरीक्षक बहादुर चौधरी।

तिरानब्बे दशमलव शून्य चार प्रतिशत मतदान लगा था। निर्जलवार कृषि ज्ञान केन्द्र पार्टी के अनुसार जिला में करीब 33,680 हेक्टर क्षेत्रफल में धान खेती हुई केरत हुई केरत में अब श्रम 31,429 हेक्टर क्षेत्रफल में धान लगा था। निर्जला को पाचक समय तैनात कृषि ज्ञान केन्द्र चलेगा सिंचाई सुविधा पूर्ण क्षेत्र में लगा था। निर्जल बाजार से

तहसील सदस्यता अधिकारियों और प्रगति कर्मी समय सिंह अधिकारियों बैदात करो सुखानी में विधानी और चुनाव समय पालना करने समय विवाद कायमी छ। चार महीना में दस वर्ष स्वतंत्र का 700 किलोमीटर के दिन व्यापी छवि में जिला कमृत भाग 680 जना घाइट भैया आज मात्र सड़क प्रदर्शन एक जना कमृत भाग 20 जना घाइट भैया राष्ट्रीय

ऑपरेशनल रूपये का बैलेंस प्राप्त करने वाले कार्य के तहत किसान चुके होंगे सरकार के बैंक के तहत अंतर्गत स्वदेशी की प्रयास फसल किया है और अंतर्गत परीक्षा लेकर प्रयास के दूसरे चला होगा।

आवश्यकता जिनका आवश्यक कार्यक्रम अनुसार है उस जिला प्रसारण नई कमेटी देखी 35 दिन अर्थात 2083 सुंदर इस पालिका को कृषि विकास शाखा में निवेदन दी ज्यादा सरकार अभिकरण कर समय को जानकारी

साथ एक हजार बयासी तिरासी में इस वर्ष भरी नगर पालिका का विभिन्न अपना मंगठन भरी कृषि विकास शाखा में नफरा कृषक समूह नवीकरण में नया गठन भरी दर्ता नफरी का दर्ता करने इच्छुक कृषक समूह दर्ता का लगी अक्षर प्रमोजन का आवश्यक कार्यक्रम सहित जो सूचना प्रसारण भाई मिति देखि 25 दिन अर्थात 2083 प्रमुख 16 गति भित्र इस पालिका को कृषि विकास शाखा में निवेदन दी दर्ता तथा नवीकरण करने होना सबक को जानकारी को लगी यह सूचना प्रसारण कर एक अनुसूचित कारण विधान नमूना निवेदन को लगी पांच बड़ी नगर पालिका कृषि विकास शाखा

0: उसे साफ से सूट में पैसा जरूर खरीद और विराट से पड़ रहा है जो कोई यहाँ ऐसा था कि जब रास्ता यहाँ सिटी पर भी रास्ता नहीं है बढ़िया फिल्म हो बहुत बढ़िया चीज हो तो फिल्म बहुत बता
1: लेकिन बाबा जी कोरोना के दस को लाख